0: सही त चल नहीं रहा है।
1: ये क्या हुआ?
2: What happened?
1: चला गया होगा।
0: अब क्या करेंगे? एग्जैक्टली at 10 AM आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ आना था वो आया ही नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट

0: रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज नामै काफी छ। रेडियो टाइगर स्टुडियो टाइम। यति बेला साँझको 5 बजेको छ।
1: कान्छी, गहना कहाँबाट किन्ने सोच बनाएकी छौ? कहाँबाट हुनु नि दिदी, म त अन्त कतै नगई हाम्रै सुन्दर नगरी भुरी गाउँमा रहेको विजय सुनचाँदी पसलमा जाने विचार गरेकी छु।
2: विजय सुनचाँदी पसलमा नै किन नि?
1: त्यहाँ त आकर्षक डिजाइनका गरगहनाहरूमा झाला, जुली, फुली, मंगलसूत्र, जन्तर, छड्के, तिलहरी, इन्डियन मंगलसूत्र लगायत बिना रचाइनका गरगहना पाइनुका साथै आधुनिक डिजाइनका सामानहरू उचित मूल्यमा अर्डर अनुसार तयार गरिन्छ। हामी कहाँ नेपालगंजकै मूल्यमा सुनचाँदी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। विजय सुनचाँदी पसल अब नयाँ व्यवस्थापनका साथ सञ्चालनमा आएको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। प्रोपराइटर श्यामलाल सुनार। विजय सुनचाँदी पसल ठाकुरबाबा नगरपालिका 1 भुरीगाउँ बर्दिया। सम्पर्क नम्बर 9843638858। ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो चाहना हो। राजवंशी मेडिकल हल भुरी गाउँमा तपाईँहरूकै चिर परिचित अनुभवी स्वास्थ्य कर्मी इन्द्रबहादुर राजवंशी 24 घण्टा बस्नुहुने भएकाले समयमै सेवा लिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। उपलब्ध सेवाहरू गर्भवती, सुत्केरी, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, दीर्घ तथा तत्काल भएका सम्पूर्ण रोगहरूको उपचार तथा परामर्श, हात गोडा जीव दुख्ने लगायत सम्पूर्ण रोगहरूको फिजियोथेरापी, मालिस गर्ने, सेक्ने, आधुनिक मेसिनबाट सेवा दिइने, दिशा पिसाब रोकिएमा निष्कासन गराउने, सम्पूर्ण रोगहरूको निशुल्क परीक्षण र परामर्श, रगत दिशा पिसाबको परीक्षण समेत गराइने, बच्चा लगायत सबै उमेरकालाई क्यानुला लगाइने, कहाँ जाने, कुन डाक्टरलाई देखाउने बारे विशेषज्ञ सेवा लगायत परामर्श तथा सल्लाह दिइने, डाक्टरले लेखेका औषधिहरू मगाइदिने व्यवस्था भएको, आपतकालीन अवस्थामा घरमा नै गएर स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं परामर्श सेवा दिइने। राजवंशी मेडिकल हल ठाकुरबाबा नगरपालिका 1 भुरीगाउँ। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858025002 र 9820441461।
3: जीत पुरवाली, यह साल तो निश्चिंत हो गवा गए।
4: हाँ, तब पतलिया याद करो तो जू डराए लागत है। पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत है। सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
3: हाँ तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल गवा।
5: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होता है, यही नाते बाढ़ से बचे खरती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सबके संपर्क करे, सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए, सर सफाई में ध्यान दिया जाए।
6: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।
7: नमस्कार, तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज। गर्जन छ सधैं, बाप छ।

प्रिय मैगर का बिलाहुकरा जय मसी और नमस्कार। मैं अपना हुकन के सामुफे महात्मा प्रसाद चौधरी आगे लाटू। आज हमरा आहान का न शीर्षक में वचन हेरा जाय थी। येसु सिखेला तरीका है आहान कई का कथा। ये चाहिए एक मेरी कथा हो, सांसारिक कथा ज्या करते आत्मिक अर्थ बा। मने हुकरा येसु बात है सुन ब्याला ई आहान हुकन बुझकला एकदम सहज कराए। उस समय में ध्या समय वहां आहान का अर्थ फे बटाई था, ताकि वहां का बटाई खोज लखो हो जाना सेकर। यहाँ हरेक भाग का संदेश का संदेश दी हटा कना बात फे वहां उनका सिखाए। जब अपना आहान है पहर भी दांचे होशियार हुई पर कुछ मने हुकरा आहान का अर्थ लगे ना बाटम दांचे चुप था। वो कहा लग था ई कला की हो, ई कला की हो। आहान है आम सम्प्रदायिक रूप में लेकर याकर अर्थ लगाए नहीं पड़ता। याकर मुख्य विषय एकदम भार और येसु हुकन बटेलक बाटक विशेष मेरिक रहा, जुन बाट का चिंता हमरा नहीं करा पड़ा। वहां एक ठो आहान महीन एकदम मजा लागत, एकदम मन पर था। ओ आहान मोर मन में और मन का लागे एकदम शांतिक बात लगता। क्या करे की आहान परमेश्वर का संदेश प्रचार के ना बाटे बताए। मट्टी 13 अध्याय परमेश्वर का वचन है बिया संग तुलना कैल बा। एक ठो मनैया बिया बुआई निकल, बिया बुई बेर आकुर बिया डगरी में परल और चिरे चुरुंगन आके खा देला। तब यहाँ और मेरी जग्गा बारे में बतायल बा। ऊ हो पथराहा जग्गा। ऊ जग्गा मा दांचे के लिए माटी रहा, जहाँ 10% माटी और 90% पथरा बा। और से जब बिया इस जग्गा में परल जहाँ ढेर गहीर सब माटी नहीं रहल, और से ये बिया झट्ट जामल तर मजा से जर त्याग नहीं सेकल, और से घामक मारा उस झट्ठे सुख गए। वसह का जब आगे और हेर भी यहाँ और मेरी माटिक बाटे देख भी, जुन जग्गा कटहा जग्गा रहा, जहाँ बिया परल ओ कांटक मारा जामल और जमला बिया बढ़ा नहीं सेकल, और से ये बिया फे अपन उत्पादन दिया नहीं सेकल। ये चौथो प्रकार का जग्गा एकदम आनंददायी जग्गा रहा, एकदम मजा जगह रहा, मलगर जगह रहा, जहाँ बिया जामल एकदम मजा से बढ़ल वही चाहे एकदम मजा से अपन जर तर और फाकल, जहाँ बटायल बा की 30 गुना 60 गुना 100 गुना ढार फर्क दिहल। का करे की चाहे मलगर जगह में पड़ल रहा। ये आहान का अर्थ का हो, अपन है ध्यार ख्वाजक नहीं पड़ी कबीला हुकर। जब अपना तरा और जैबी अठारह पट्टे से ई आहान का अर्थ व्यक्त भी ई आहान है बिरहट रूप में कैलक व्याख्या देख भी। आय हमरे इहना हेरी डगरिम परल बिया कलक ओसिन मने हिता। हुंकर परमेश्वर का वचन सुनना त सुनथा तर नहीं बुझथा। हुंकन याकर अर्थ था नहीं रथिन। परमेश्वर का वचन सिखेलक बात हुकन मतलब नहीं करता। एकर बारे में हुकर नहीं सोचता और सोचबो नहीं करता। वाकर कारण जब शैतान आए इखंड में उन्हें चिरैयक संज्ञा दियल बा, परमेश्वर का वचन चोर कर ले जाए और ऊ बिया काम नहीं लगना बनाए। तब जाकर और जमीन का बारे में बात बटोई था, जो जमीन परिस्थितिक जग्गा के रूप में यहाँ दियल बा। और जब हुकरा वचन सुन था एकदम खुशी हुई पुख्ता, वचन है एकदम खुशी ले ग्रहण कर था, तरा वो खुशी ध्यार नम्मा समय सम नहीं टिकत। वाकर आधार ध्यार गहिर सम अठो वाकर जर ध्यार तरा सम नहीं गेल रहा। और वह से जब पहल समस्या आयल सतावट आयल विश्वास से पाछा हट था, हुकनक हृदय में मजा नहीं रहा। ये मने हुकरा वह जर लगना तरा सुख जीना बात जस्त हिता। हिंकनक मन में दोष रथिन, ईर्ष्या रथिन, रीस राग रथिन, और से याकर नतीजा जब समस्या सतावट का घाम लगता हिंकरा नई बहर का मुझी था ओलाजी था विश्वास से पाछा हज्जी था। वसन का और जमीन का बारे में बटेल बा, जुन चाहे संसारिक धन संपत्ति चिंता के बारे में बात बटोई था। मुख्य समस्या कलक संपत्ति होकर बात अपना हुकन ठा है बा। क्या करे की धनी मन हुकर स्वस्थ है की हुकर हुकन जीवन अपन अधीन में धर सकी। हुकर जीवन का मालिक हुकर अपने हुई तक का विचार कर था। वाकर नतीजा हुकर हुकन जीवन में परमेश्वर नहीं चाहे हीन करा अवस्था में पुगता। यदि हुकर बीमार पर ही हुकर डॉक्टर के पुग ही, जब कोनो कानूनी समस्या आई हुकर कोर्ट कचहरी अड्डा अदालत पुग ही, कौनो काम करना रही हुकरा काम कहना मन खोजता, हिंकरा पैसा भर में सारा काम करता, हिंकरा अपन लाख खाईना चास से हर एक जरूरत पैसा से पूरा करता। कभी ना हुकरा
अपना हुकन थाहा बा। जब कौनो मनैया परमेश्वर हे नै पाइल रहत कला सेवाकर जीवनमा ऊ एकदम ध्यार चिन्तित रह। का करे कि हुकरा कर गैला काममा हुकरा सफल हुई कि नै हुई कना बाटम चिन्ता गर्था। हुकरा समस्या सँग जुध जाइटा कना बारेमा चिन्ता गर्था। कसिका हुई का करम कैका चिन्ता गर्थिन ओ चिन्ता रथिन। ओहर से यी जीवनका फिक्री ओ धन सम्पत्तिक लोभ लालचले हुकनकमा वचन हा उठमुटारे था। ओ बहरला बहरला जमला जमला विश्वास मरट। ओ अन्तमा आका मलगर जग्गा बारेमा बात बटोई था। यी ऊ जग्गा हो जे आपन हृदयमा ख्रिस्त स्वीकार करल था। प्रभु मोर भित्र आओ, मोर जीवनमै सफा पारक चाहतू ओ मुक्तिक आशा महिन देऊ। मोर पाप क्षमा हुइल बा त कन बाटक निश्चयता महिन देऊ। अपना महिना प्रेम करथे कैकमै जानु ओ अपनक मा पैना ओ सुघर मुक्तिक उपहार ख्रिस्त येशु द्वारा मै पाइसेकु। उहाँमा विश्वास ओ भरोसा कर महिन सिखाई। जब मोर पाप क्षमा हुई मोर हृदयमा शान्ति दी ओ मोर अपराधका दोष महिन से दूर हटाई। प्रभु मोर जीवनमा 30 गुना 60 गुना फल फरसेगा। महिना चाह जुन तरिका से छनौट करी तर मोर जीवनमा अपना काम करी मोर जीवनमा ढाई देलक अपना की योजना मैं थाहा पाइसेकु। मैं उहिना पहिचान कर सेकु ओ उहाँ अनुसार मैं सेवा कर सेकु। मोर जीवनमा मैं आनन्द शान्ति ओ अपनकमा होकर सहज महसुस कर सेकु। जसै अपनक वचन आए मोर हृदय रूपी जग्गामा भिटामिन मिनरल पानी सारा मेरी खनिज भेटाइसेकी ताकि अपना त्यार उत्पादन मैं अपना है देह सेकु। जुन उत्पादन मोर छर छिमेकमा देख सकत हुकरा प्रेम है क्षमादान है मोर जीवन से निकल देख सकत। जुन मेरी यीशु चाहल रहा उह अनुसार का जीवन का डगरीमा लै जाइ सका ताकि मोर जीवन और आगा उदाहरणीय जीवन बन सका। हुकनक आगा में मुक्ति संदेश बताई सकू। ओ परमेश्वर हुकन प्रेम कथा कना बात हुकन बताई सकू। और से कबीला हुकरा महीन लागत हमरा इना वर्षा में एक चोट पढ़ा पर था जिन द्वारा हमरा फेसबुक समझा पैठी हमरा हमारे हृदय हाँ जांच कर सकती। शायद हुई से कि अपना परमेश्वर मा जाय परी ओ कही कि प्रभु मोर जीवन मा हुईलक पथरा हाँ हटा दी। ओ अपना महीन अमीन वचन का बिया जर फाका से कही के उहिन अमीन गहीर से क्वारा परी मलगर बनाई परी पवित्र आत्मा अपना हृदय रूपी जग्गा है कोरही मलगर बनेही। शायद हुई से कि इस समय अपना अपन हृदय से दान से ध्यार समय ध्यान दिए परी दान से हृदय है समय दे परी का करे कि परमेश्वर का प्रेम से हृदय भर कहीं मैं चाहतू। एक मलगर जग्गा परमेश्वर का लाख उत्पादन करत अनि ऊ मलगर जग्गा हमारे हृदय है बनाए ताकि हमारे हृदय से पवित्र आत्मा के फल फल सेका अनि ऊ फल चाहिँ 30 गुना 60 गुना अनि 100 गुना फल फलाइसेका। जब ख्रीष्ट येशु दोस्रो आगमन भइही अनि ऊ फल हमार जीवनमा फल लेखिही त आनन्दित हुई हाम्रो फे आशिषित हुई हाम्रो जब आशिषित हुई परमेश्वर महिमित हुई अनि हमार छर छिमेक आफन्त नातपात सब जे चाहिँ हमार जीवनद्वारा आशिषित लिही अनि आशिषित पही। परमेश्वर आज की वचन द्वारा सच्चै नै आफ्नो जीवन आफ्नो मण्डली परिवारको जीवन अनि व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन आशिषित अनि फलदायी फलवन्त जीवन बनक चाहता देखक चाहता परमेश्वर आशीष दे। आमेन।

प्रिय मैगर कवि लहुद्रा, आजिक कार्यक्रम सुनके अपने हिन कसिन लागल आशा बा पक्कै फेन आशिषमय लागल हुई। यदि यी कार्यक्रम के लाग अपने के थन कौनो प्रश्न जिज्ञासा हो सुझाव बा कलेसे वस्तहाँ का बाइबल सम्बन्धी कौनो पुस्तक पुस्तिका पाएक जाठी भी कलेसे

0: आयुर्वेदिक उपचार गरिन्छ।
1: सम्पर्क तीर्थनारायण आयुर्वेदिक औषधालय कोहलपुर बसपा क्षेत्र टिकट काउन्टरदेखि पश्चिमपट्टि। मोबाइल नम्बर 98484461।

0: किशोरावस्था भविष्य निर्माण गर्ने समय हो। लागू पदार्थको एकपटकको प्रयोगले पनि लत, मानसिक समस्या र पढाइमा असर पुर्याउन सक्छ। साथीको दबावमा होइन आफ्नो सपनाको पक्षमा निर्णय गरौं। तनाव भए खुल्ला कुरा गरौं। समाधान लागू पदार्थ होइन, लागू पदार्थबाट टाढा बसौं। स्वस्थ र उज्यालो भविष्य रोजौं। स्वास्थ्य कार्यालय बर्दिया र रेडियो टाइगरद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: पोर्सालिक बात सम्झोट आम हिन्डर लक्टेर हटबरा पानी वर्ष बेर अस्तिम चम कहाँ र सेक्जाय त सोचो त लट्ठी ठिक्कम घर डान डान पानी वर्ष टिकी मन छटपटाए लाग
2: धन्न ब्यालम लट्ठी ठिक्कम से सुरक्षित ठाउँमा सरली नारी बट्टी
1: हाँ हो बदा
3: बर्खक ब्यालमा बहिने ढ्यार जोखिम रहत उहमार बहिया से बचकला पहिला सावधानी अपनाए लड्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रही एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण तक सूची बनाई एकचोट प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ध्यार हुलकोर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
4: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
5: के रेडियो ठाउँ ठाउँ के आवाज रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ट्ज।